0: ये है लाइका रेडियो TV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, event in Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
1: Atif Aslam live in the UK.
2: Studio 2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Laika Radio.
3: Budget tight, पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers it's your Laika Radio

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्सियों पर

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई

जोर ना जीवन मरण नहि जोर, जोर ना राज माल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सो

धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए देव गंधार शहर विच गए। ये बड़ा जंगली अते पहाड़ां दा इलाका सी। ये लोग जीवां नूं खांदे सन। कोई भी मनुख इन्हां दे हाथ लग जावे उसका मास खाना। इस नगरी दा राजा देवलूत जो हर दम खून दा प्यासा रहिंदा सी। लखां देव इस दे अधीन सन। जेड़ा बंदा इस दी नजर विच आ गया ओ कदी बच नहीं सकिया। इन्हां दे अत्याचारां दा सारे इलाके विच बड़ा भय सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह

ये लोग बड़े खतरनाक हैं। कौड़ा ता राक्षस एक सी ना कौड़ा राक्षस इत्थे लखा राक्षस हैं। मानस जाति नू ए चुन चुन के खांदे हैं। कौड़ा ता मनुखा नू तेल विच तल के खांदा सी पर ए मनुख दा मास कच्चा ही खा जांदे हैं। एडे भयानक हैं महाराज। फिर एहो जिया खतरनाक थावां ते तुसी आपे क्यों पहुंच जांदे? मर्दाना कंबिया महाराज एडे भयानक शहर विच क्यों जा रहे हो? चलो वापस चलिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे ईश्वर कृपा करेगा एही राक्षस तेरी तन मन करके सेवा करनगे सिद्धे रस्ते आ जानगे। मर्दानिया तेरी भुख ने अनेकां दा भला कीता है अनेकां नूं तारिया अज भी किसे दा भला होवेगा। एही लोग तेरे चरण पूजनगे तैनू छत्ती प्रकार दे भोजन दिया के छकाउणगे तेरी सेवा करनगे। धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित होके बैठ गए। इतने नूं देव लूत असे उस दे राक्षी फौजां सामने आ खड़ोतियां बड़े खुश हन कि अज एक शिकार नहीं तीन मिलते हैं। ते मर्दाने दा रंग पीला पैन लगा एडियां भयानक शकलां। महाराज अज नहीं बचांगे ये तां बड़े भयानक मनुख जापदे बड़े भयानक राक्षस हन। गुरु साहब कहन लगे तू जलाल विच रहो अकाल पुरख दे सिमरन विच जुड़िया रहो मन ना खिंडे ता कोई किसे दा कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। जिन्हां नूं बाणी दा आसरा है उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। कितनियां हनेरियां आउन तूफान आउन जिन्हां बूटियां नूं जिन्हां ब्रिशां नूं

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सैटर माइक्रो फिल कंटेनर्स।
2: जी टीवी HD पर देखिए तुम से तुम तक।
3: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
2: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
4: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
3: मैं ही राजीव भाटिया हूँ।
2: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
5: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग,

0: व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all, and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom, and kadak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
2: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही
3: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लिखाई रह्यो छे
4: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अन स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
3: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
4: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
3: दर्शन पण अने यूरोप पण
4: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
3: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स
4: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
5: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
6: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
7: Hey, it's me, Raj Badin. Don't forget to catch me on Drive every weekday afternoon from 4 p.m. where we have Filmy Scramble, Choice Active, Lyrical Miracle, and of course, The Big Question, as well as all the latest news, showbiz, sport, and traffic and travel for your area. And how can we forget the big prizes which continue?
6: Drive is sponsored by Pepe's. Find your flavor at Pepe's.
8: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha.
1: Available at Vulcan stores and all independent stores nationwide.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
6: Mantra Holidays.
7: What's your travel mantra?
8: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
9: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
8: जेमीन्स फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

Tasty track of the hour brought to you by Coco Noodles. बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। It's अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: Acha Rice is available in all Asian grocery stores nationwide and Sony Cash and Carry, all Sainsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira Cash and Carry, Southall, Dagenham Supermarket. Yes, Disha Rice.
1: Disha Basmati Rice.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: 0208574 8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: With Fish Bernaga.
6: Leica Radio, London.
5: 90s throwback plays now.
6: Leica Radio.

0: Petco microwave food containers.
1: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
2: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
3: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
2: Call today on 01923 883 100
3: or go to skylordcruiseandholidays.com.
2: Book with confidence.
3: We're Atoll protected.
4: Keep calm.
5: May को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका कौन पत्नी कौन वो सवाल बहुत है आंसर्स और भी एंटरटेनिंग पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में
6: मॉम आई एम आउटसाइड यस लिटरली जस्ट लैंडेड
7: वेट हाउ आर यू कॉलिंग ऑलरेडी आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर वाईफाई
6: ओह आई एम ऑन सिमजी डाउनलोडेड द ईसिम बैक एट हीथ्रो
7: एंड यू डिडंट पे दोस मैसिव रोमिंग चार्जेस
6: नॉट अ पेनी एक्स्ट्रा जस्ट अ चीप लोकल डेटा plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
1: Kitty party ho ya business

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: जी टीवी HD पर देखिए तुम से तुम तक।
3: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
2: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
4: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
5: मैं ही राजीव भाटिया हूँ।
2: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me.
8: Southall Travel, at all protected.
9: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
10: Atif Aslam, live in the UK.
9: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
10: Book your tickets now at AXS.
9: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
12: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in 3 different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and karak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
13: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
14: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
13: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन पोटैटो चिप्स।
14: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
15: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208767-2142.
16: Al Noor, purana ba'itmaat naam. Nayi range ke saath, premium pulses. Pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak. Aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor, taste the difference.
17: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: राहत फतेह अली खान जी हाँ, धड़क धड़क जाए और घड़ी की कांटी भी धक धक करके आगे बढ़ती है. तो चलो लेट्स स्क्वीज इन वन लास्ट बिग ट्रैक.
1: Radio Wally gets nostalgically naughty only on Leica Radio.
0: As we pick up the pace with this one, milte hain news ke baad for the Lazy Lounge.

0: It's for men and women.
1: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture. Now open 7 days a week.
0: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
3: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
4: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: Atif Aslam, live in the UK.
5: The O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Leica Radio.
7: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: it.
1: Leica Radio. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
0: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
1: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
0: Atif Aslam live in the UK.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
0: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: The biggest Asian love songs in the capital.
7: Leica Radio.